0: विद्यमानस्य दिव्योद्रोद्भवस्य मृगनक्षत्रेः अटङ्गापटारिजातस्य फेरन्नघटियो
1: सुमति सुमति
0: सुमति नामदेयस् सिङ्गारवेलन् लव्वस्य वरुङ्गाल वैफस्य देवसेनासमेत सुब्रह्मण्यस्वामिने अष्टोत्र नमः पूजाञ्च करिष्ये अय्यय्यो पोरिये पोरिये
2: अरे भो रंगा श्रीलंगा कोपर तेंग।